0: रंग परंग अनेक न जापन करत बाजिया अंदर जियो सब किस जानला सब किस तेरा बस तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्प कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दा सुनदा तुदिया गै बिन बता
1: सिखो शब्द प्यारे हो

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧਨ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧਨ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ महाराज की हजूरी में आपको दिए गए नंबर के ऊपर अपने बैठो दिए गए नंबर के ऊपर दुल्हन के माता पिताओं से विनती है कि दुल्हन के समय विनती है कि आप दिए गए गाड़ी का उसके सामने रखना है दिया गया नंबर उसके सामने रखना है गुरु महाराज की हजूरी में अरदास के ऊपर गुरु महाराज पर हजूरी लोग की सगाई पर संपन्न होगी उसके ऊपर सभी दुल्हे संपन्न होंगे उससे सभी दुल्हे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर प्रस्थान करेंगे हाथ पर भवन की ओर प्रस्थान करेंगे राम जड़िया प्राप्त करनी है गुरु महाराज की सभी माताओं से बेनती है सभी जगह बैठेंगे दुल्हनों की सगाई की जगह रसम दुल्हनों की सगाई की जगह रसम छह बजे श्री गुरु गोविंद सिंह जी भवन में छह बजे श्री गुरु के माता जी भवन में समय पर दुल्हनों को तैयार करना श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु महाराज के भवन में श्री गुरु महाराज दुल्हन की सगाई की रसम पहुंच लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के प्रस्थान करें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के प्रस्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के मैदान में गुरु ग्रंथ साहिब जी लंगर अटूट बरतेगा लंगर अटूट बरतेगा सुबह ठीक 8 बजे सुबह ठीक 8 बजे श्री गुरु रामदास जी आते निवास से श्री गुरु महाराज जी आते निवास से उपरांत गुरु महाराज बधाई की रसम के लिए सभी दुल्हे संभाल साहब के ओर प्रस्थान करेंगे सभी दुल्हनों के रिश्तेदार माता पिता सभी के दुल्हनों के रिश्तेदार समय का ध्यान रखना है और समय पर अपने समय का ध्यान सभी ने पहुंचना है ताकि सामूहिक भोजन वेला में की सभी रस्में सामूहिक समय पर संपन्न सभी रस्में के समय पर संपन्न की से एक बार 71वें सामूहिक भोजन वेला में पहुंची सभी साथ सभी का लाभ में पहुंची सभी साथ श्री अकाल श्री अचल नगर साहिब के पांच श्री जिला संत बाबा सलमान सिंह जी इत्यादि समूह बाबा प्यारे सिंह बान समूह बाबा जी कारण सड़क पर प्रशासक डॉक्टर सतीश सिंह जी अधीक्षक सरकार रविंद्र सिंह जी और अधीक्षक समूह कर्मचारी एवं अधिकारियों की ओर से आए हुए सभी साथी संघ अधिकारियों की ओर से आए हुए खासकर नौजवानों से भी साथ जोड़कर फोटोग्राफी के बाद साइड में खड़े होंगे सगाई की साइड में खड़े होंगे सगाई की सगाई की सगाई संपन्न होने के ऊपर सगाई को फोटो खींचने के लिए समय दिया जाएगा फोटो खींचने के लिए समय दिया

तस्वीर बनाने के लिए हमें सभी ने तस्वीर बनाने के लिए हमें कलाकार नौजवानों से बार बार अनुरोध करते हैं कि आपके सभी की सेवाओं के लंगर में बहुत अभिषेक सेवाओं के लंगर में दुलार दर्शन के लिए माता पिता ने अपने परिवार में कम देर में पांच पांच ने उनको बुलाकर भंसक हाल में सेवा के लिए उपलब्ध करवाना है ताकि आज भी छब्बीस साल संकर हो गुरु महाराज के साथ सगत हो गुरु महाराज का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह खालसा।

ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਲਾਵੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਸਭੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਲਾਵੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਭੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, जो भी दूल्हे की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सगाई में भी ध्यान बस में जाना गाड़ी में भी उनके लिए भी बस की व्यवस्था है, साथ में अन्य भी बस की व्यवस्था है, पैदल श्री गुरु ने बताया कि वहां के लिए जाना चाहते हैं तो डॉक्टर की सभी भवन की और छात्रों की भी व्यवस्था की गई है, सभी भी दुरुस्त रखी गई है। माता पिता महिला रात का ध्यान रखना है कि पिता गर्मी तेज है, सभी ने अपने स्वास्थ्य की देख रेख है, जिसके लिए द्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा आपके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, आपके लिए यहाँ पर जो रिश्तेदार बस में जाना चाहते हैं वो जो रिश्तेदार गुरुद्वारा में चाह रहे हैं कि वो बसों में बैठ कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर जा सकते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो दूल्हे जा सकते हैं पैदल, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ठाकुर की व्यवस्था की गई है, आपने छह चीजों का लाभ लेना है, संपन्न किया जा सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: अपने स्थान पर दुबले हो जाएं। गुरु महाराज की हजूरी में स्थान पर खड़े हो जाने जा रही है, हजूरी में अरदास होने जा रही है।
1: श्री वाहिगुरु जी अरदास, श्री वाहिगुरु जी अरदास, वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय, श्री भगवती जी सहाय, श्री भगवती जी की बात, श्री दशमी की बात, श्री दशमी मरका गुरु नानक लई से आगाय, गुरु नानक लई से अंगद बैठे मरदास, रंग दर्शन हुई सहाय, दर्शन हुई सर जन हर गोबिंद नो सिमरा श्री गुरु राय, सिमरा श्री हरि हर कृष्ण
0: सभी फोटोग्राफर्स और सभी फोटो लेने आपने थोड़ा सा थोड़ा सा जा सके

सगाई के रसम के ऊपर सभी दूल्हे सगाई के रसम के ऊपर जिस बुलंदी जिस भावना के ऊपर प्रस्थान करेंगे सगाई में आए हुए सभी साथ संगत के लिए गुरुद्वारा में सगाई के द्वारा आचार के लिए सभी और सच्चा के लिए है गर्मियों का ध्यान भी बताते हुए के लिए गर्मियों का जो मामाएं बहने हैं वो तो राकेट का पर माँ के पास बहने बस की व्यवस्था के लिए उस बस के व्यवस्था के लिए उस बस पर बैठ के आप श्री गुरुद्वारा से भी भवन की ओर जा सकते हैं जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भवन के मैदान में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भवन की व्यवस्था की गई है सभी अलग अलग की व्यवस्था की गई है।

सभी दूरों ने गुरु महाराज की हजूरी में सभी दर्शकों को गुरु महाराज के कृपा गुरु महाराज के परिक्रमा करकर गुरु महाराज के अमृत रूप से श्री गुरु अमृत गुरु होने पर प्रस्थान श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

सभी दूलों से बेनती है, सभी आप सभी से बेनती है, दरबार साहब में गुरु महाराज की हजूरी में दरबार साहब के गुरु महाराज दरबार साहब की परिक्रमा के कारण दरबार साहब के सभी के सामने की सीढ़ियों पे एकत्र बना जहां पर इन्हें की सीढ़ियों सामूहिक फोटो के ऊपर है सामूहिक रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहब की भवन की ओर प्रस्थान करेगी। जहाँ पर श्री गुरु रामदास जी यात्रा निवास के सभी ने लंगर छिड़का गुरु महाराज की गुरु महाराज की दुल्हन के माता पिताओं से आज जो दुल्हन की है की दुल्हनों की सवारी की है शाम के दुल्हनों की सवारी 6 बजे शाम में श्री गुरु रामदास 6 बजे निवास से श्री गुरु रामदास जी और भगवान का से आप सभी ने दुल्हनों को समय पर तैयार में रखकर दुल्हनों को श्री गुरु रामदास जी भवन का लेकर आना है श्री गुरु सामग्री भवन का लेकर आना है समय पर सभी करने की व्यवस्था है। समय पर कल की जब ठीक 8 बजे कल सुबह दूलों की सेवा बधाई के लिए श्री दूलों की सेवा बधाई के लिए श्री निवास से श्री गुरु रामदास जी के प्राण निवास से सेवा बधाई के रसन के ऊपर दूलों की सेवा बधाई के रसन के ऊपर दूलों स्थान होगा श्री गुरु रामदास जी द्वारा से दरबार श्री गुरु रामदास जी द्वारा से महाराज की हजूरी में महाराज के द्वारा महाराज के सेवा बधाई के रसन द्वारा की और बारह बधाई के रसन श्री गुरु रामदास जी भवन की ओर प्रस्थान श्री गुरु ग्रंथ साहब के ठीक 11 बजे कन्यादान की रस्म संपन्न होगी उसके बाद कन्यादान के बाद धमधाम साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का कुंडल श्री गुरु के उपचार की रामा साहब का पाठ होगा और सामग्री के साथ मिला की रस्म संपन्न होगी की द्वारा के बाद दूल्हन की विदाई की जो रस्म है दूल्हन को की विदाई की जो रस्म है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भवन की हजूरी में श्री गुरु संपन्न की जाएगी सभी दूल्हा संपन्न की वाहेगुरु जी का।

एक सब पुराण और कुरान हुई, एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे भच, केते प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीर, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है। के ते गंगवासी के ते मदीना मक्का निवासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। गैर में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जाप सीख हस हारे, चंदन लगाए हारे, जो आचार पूज हारे, पाहर चढ़ाए हारे, लापसी गा हारे, गोरन बनाए हारे, मड़ी मडली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे।

अच्छे विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नरायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अवेखंग न सत्रंग न वितरंग न नेहंग नेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभ

कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्धविरधं स्वरूपे। नमो एक रूपे नमो एक रूपे। नृयुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद अविक्त यथापे विमुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे। नमो एक रूपे नमो एक रूपे। न नेहं न गेहं न शोकं न शाखं परेयं पवित्रं पुनीतं गताहं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे। नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे। न धर्मं न वर्मं न शर्मं न शाके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे। नमो वाद रूपे नमो वाद रूपे। कहूँ गंज के मंज के भ्रम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म लूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाजता में कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध सादे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के रंग पेखे कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह ग्रहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ वद्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं।

अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हों कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हों कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध।

व्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वय अनाश अंतुट तेज अनखुड भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगाद करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत गय कल्प जोग साधत तुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पावन आहार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद रीत जग याद करम कहु अग्नहोत्र कहीं तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत।

भेद अभेद छेद नरंग जेह चार चतुर्दश चक्र फिरंग जेह राग न रंग न रेख रुखंग जेह शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदश रंग जेह बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ उजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जेह पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपय सुत सिंध धूम ताप तपय कई कल्पन नो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभय तुजह एक चित्त कृपा निध को जप हे त्यु या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस

भूत भूत हंसदा गंज गंज मानिए। देव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध साध सी सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रता।

न तात्मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेग से कह वेग है सदीव विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्वठौर में विशेख आन मानिय। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत कह बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज अद देव है कहो सु कैसे पाइये। जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन व मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न सा

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेग है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छायो को मिलाओ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है, अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है। परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है, अगंज है अभंज है करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है, न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है, न अंग है न रंग है न संग है न सात है। प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है। न सीध है न सोच है न घ्राम है न घाम है, न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है। न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, न द्वैत है न भेख है न द्वी है न द्रोह है। न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है, अगंज है अभंज है भ्रम है अभूत है। अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है बलि।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपसदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विसेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ देखिय। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जान।

तवा प्रसाद रूआ मल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखै बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखै रम्यो जह चक्र चिहरण चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अब खाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पावी न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग और गापार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुखचार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जय जाप आद देवा गाद ते जनाद मुरताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीण जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैष्णंगे बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गोड गौड़ न भील भीखर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्ध न भूमा का सानूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सबद पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत सोद सोद हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकव गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सभु मिन नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखे न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जश न जाने जेब भूत भव भवान भू

कहां रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा। कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भिष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहां कर्म को कर्म है कहां भ्रम को नाश कहां चिदन की चेष्टा कहां

को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार विचार। त्व प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंद, दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन, दुष्ट निकंदन आदि प्रत्यय जछरा, असुर मारण पति उदाहरण, नरक निवारण गूढ़ गते, अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे, खंडे उदंडे अलख मते। जय जय होसी मै खासुर मर्दन, रम कपर्दन छत छिते, आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन, पुष्ट उदंडन रूप अते, जंडा सुर चंडन मुंड विहंडन, धूम्र विधुन।

मंथन रिझ सभन भज रोहरण जय जय होसी मखा सुरमर्दन चंड चक्रदन आदि गुरन चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जालपा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मखा सुरमर्दन आदि जुगाद आदि गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदानंगी अगाध गते वृडराज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दोग हरे जय जय होसी मखा सुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रधर खण वितल तले अष्टायद बाहन बोर निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मखा सुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुकी दमंके बाघव पंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी मखा सुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्ता सुर मंदन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल वधे सरतार विभर खण दुर्जन धरखण द्वतुल अमर खण धरम दुझे धूमराज विधुंसन श्रूण तचुंसन सोम्भन पात निसुंभ मथे जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद

हे मन भव करिया। ऊडे ऊड आवे सैको सा तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

उपसमासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बलजासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहंत जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई

नाहि प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद बिचारे देह।

कथा जुग जुग अटल सब को ही भाकत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सतरै सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौले हो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कूं आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा

कत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन ते साहिब की टेक नानक मन माहे जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। श्री वाहिगुरु जी अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउण दिया वेधाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर जी पिता पंथ देवाली अमृत के दाते शमशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां जी दे आत्मक स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागती जो जाहरा जोर हाजरा जोर सर्व कला भरपूर सब थाई होए सहाय। चार साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी साहिब जुझार सिंह जी साहिब जोरावर सिंह जी साहिब फतेह सिंह जी पांच प्यारे चाली मुक्ते सर्व शहीदो।

हल से जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पत का राखा आप। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतेह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारन जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। हम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सतो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। भगौण साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगन जी, नानक जीरा जी, शिकारघाट जी, हीराघाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समु खालसे जी को नगारे आ, निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री कालपुख जी का खालसा जी साहब बोलो जी। सत श्री कालपुख जी का खालसा जी साहब बोलो बोलो जी बोलो जी बोलो जी। श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगता दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाए बंदौन गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

विस्मादर विस्माद रंग विस्माद नाग फ्रजंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्मद ने खेडे पिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद शब्द विस्माद सला विस्माद जुड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े

पौड़ी शिव की संतोखी की सचो सजती आया ओनी मंदे पर नारक कर सुख धर्म कमाया ओनी दुनिया तुड़े बदनाम पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला ने